या गीता सवें आयचें कार्यक्रम संपयता। मुकल्या कोंगणीनाथ कार्यक्रमान मेळटा। परत एक पटी देव बरें करूं। येदोळवरेक कोंगणी पदा कोंगणीनाथ कार्यक्रम आयकून आसल्यात। आयकून रावात रेडिओ निनाद 90.4 FM। हे जनमनाचे नाद तरंग।